0: पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने कुछ ऐसा कहा जो किसी ने इमेजिन नहीं किया था। उन्होंने कहा, हमारा सब्र अब टूट चुका है, अब ये हमारे बीच एक ओपन वॉर है। अब नॉर्मली पाकिस्तान का इतिहास देखें तो कोई भी अज्यूम करेगा कि ये इंडिया से वॉर की बात कर रहे होंगे, लेकिन नहीं, ये स्टेटमेंट अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को लेकर थी। वही तालिबान जिसे पाकिस्तान ने खुद खड़ा किया, जिसे पाकिस्तान की ISI ने ट्रेन किया, फंड किया और दशकों तक सपोर्ट किया, आज उसी तालिबान के खिलाफ पाकिस्तान ने खुली जंग का ऐलान कर दिया है। हर एक वॉर की तरह इस वॉर की कीमत भी आम लोगों को चुकानी पड़ रही है। हर हफ्ते 100 से ज्यादा आम लोग मर रहे हैं, यानी हर दिन के लगभग 15 लोग। इसमें अस्पतालों पर हमले किए जा रहे हैं, बच्चों की मौत हो रही है, लेकिन सवाल ये कि आखिर ये सब शुरू क्यों हुआ? जिस तालिबान को पाकिस्तान ने बनाया वो पाकिस्तान का ही सबसे बड़ा नाइटमेयर कैसे बन गया? ये कहानी इतनी सिंपल नहीं है जितनी देखने में लगती है, क्योंकि इसमें जो ट्विस्ट है वो पाकिस्तान के जनरल्स ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। साल 1994, अफगानिस्तान की धूल भरी सड़कों पर एक कॉन्वॉय चल रहा है। इसमें बैठे हैं ISI के ऑफिसर्स और उनके साथ एक आदमी जिसका नाम है मुल्ला उमर। एक आंख से अंधा, पगड़ी बांधे ये इंसान जो एक छोटे से मदरसे में पढ़ाता था। ISI के ऑफिसर्स उसे एक डील ऑफर करते हैं, हम तुम्हें हथियार देंगे, पैसे देंगे, ट्रेनिंग देंगे, लेकिन तुम्हें हमारे लिए बस एक काम करना है, अफगानिस्तान पर कब्जा करो और हमारा कहना मानो। असल में इस डील का आइडिया 1990 के दशक में पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी को आया था, जब अफगानिस्तान सिविल वॉर में डूबा हुआ था। उनका आइडिया था कि अगर अफगानिस्तान में एक फ्रेंडली सरकार बिठाएंगे हम, तो इंडिया के खिलाफ एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिलेगी। तालिबान के लीडर मुल्ला उमर इस डील को एक्सेप्ट कर लेते हैं। ISI रिस्पॉन्स में ऑयल के टैंकर्स भेजता है, हथियारों की खेप भेजता है और पाकिस्तान के अंदर मौजूद मदरसे तालिबान के रिक्रूटमेंट सेंटर बन जाते हैं। सिर्फ 2 साल के अंदर अंदर 1996 में तालिबान काबुल पर कब्जा करने में सक्सेसफुल हो जाता है। अफगानिस्तान में तालिबान की नई सरकार बनती है। उस वक्त दुनिया में सिर्फ 3 देश थे जिन्होंने तालिबान की सरकार को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया, पाकिस्तान उनमें से एक था। लेकिन फिर साल 2001 में अमेरिका पर सबसे खौफनाक आतंकी हमला होता है। अमेरिका जवाब में तालिबान की सरकार गिरा देता है। पब्लिकली देखा जाए तो पाकिस्तान अमेरिका का इस मौके पर साथ देता है, लेकिन सीक्रेटली वो तालिबान को सेफ हेवन, ट्रेनिंग और पैसा सब कुछ दे रहा था। पाकिस्तान का ये डबल गेम 20 सालों तक चला और जब 2021 में अमेरिका निकल गया, तालिबान वापस पावर में आया, तो उस वक्त के पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा, अफगान्स ने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं।
1: ज़हनी गुलामी की जंजीरें तोड़ना ज्यादा मुश्किल होता है, जो अभी अफगानिस्तान में गुलामी की जंजीरें तो तोड़ दी उन्होंने।
0: जैसे तालिबान की जीत पाकिस्तान की अपनी जीत हो। पाकिस्तान को लगा कि अब उसके पपेट वापस गद्दी पर बैठ गए हैं, लेकिन पाकिस्तान ने एक चीज कैलकुलेट नहीं करी थी, जो ताकत तुम धार्मिक कट्टरता से पैदा करते हो वो कभी तुम्हारी नहीं रहती, वो अपने रूल्स से खेलती है और वही ताकत अब पाकिस्तान की तरफ मुड़ चुकी थी। यहीं पर एंट्री होती है तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान की, शॉर्ट फॉर्म TTP। इसको पाकिस्तानी तालिबान भी बुलाया जाता है। ये वो लोग थे जो ISI के मदरसों में पढ़े थे, अफगान तालिबान के साथ लड़े थे, लेकिन जब से पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ दिया था अमेरिका की वॉर ऑन टेरर पर, तब से ये पाकिस्तान के खिलाफ हो गए थे। TTP का मकसद सिर्फ एक है, पाकिस्तान की इलेक्टेड सरकार को गिराकर शरिया लॉ लागू करना। यूनाइटेड नेशंस ने इसे आतंकी संगठन भी डिक्लेयर किया हुआ है और इस मकसद के लिए TTP ने पाकिस्तान में खून की नदियां बहाई। जैसे कि दिसंबर 2014, इमेजिन करके देखो, पेशावर का आर्मी पब्लिक स्कूल, सुबह के 10 बज रहे हैं, बच्चे अपने क्लासरूम में बैठे हैं, कोई मैथ्स का सवाल सॉल्व कर रहा है तो कोई अपने दोस्त से बातें कर रहा है, उनके बैग्स में टिफिन बॉक्सेस हैं जो उनकी माओ ने सुबह पैक करके भेजे हैं, और तभी गनशॉट्स की आवाज सुनाई देती है। TTP के आतंकियों ने एक एक क्लासरूम में जाके गोलियां चलाई, 132 बच्चे मारे गए, 132 बच्चे जिनकी उम्र 8 से 18 साल के बीच थी। टीचर्स ने बच्चों को बचाने की कोशिश की, एक टीचर ताहिरा काजी ने अपने स्टूडेंट के सामने खड़े होकर गोलियां खाई। कुल 149 लोग मारे गए उस दिन। ये पाकिस्तान के इतिहास का सबसे काला दिन था। 2021 में तालिबान के पावर में आने के बाद से पिछले 5 सालों में TTP के हमले और भी ज्यादा बढ़ गए हैं। 2024 में 2236 लोगों की टेररिज्म रिलेटेड इंसिडेंट्स में मौत हुई पाकिस्तान में, जबकि 2025 में ये नंबर बढ़कर 4001 हो गया, ऑलमोस्ट डबल। ये बात इस हद तक बढ़ गई है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनिर ने TTP को फंडामेंटल एनिमी कहा।

0: लेकिन यहीं पर यह सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड बन जाती है। असल में टीटीपी खुद को अफगान तालिबान का एक्सटेंशन बताता है। उसने अफगान तालिबान को एलिजियंस प्लेज की हुई है और अफगान तालिबान ने टीटीपी को अपनी टेरिटरी में सेफ हेवन दे रखा है। सोचकर देखो कितनी अजीब बात है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान के सबसे पुराने दोस्त के घर में बैठा है। ये ठीक वैसा ही है जैसा पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ किया था ओसामा बिन लादेन को शरण देकर। अब यही चीज तालिबान पाकिस्तान के साथ कर रहा है। और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक क्विक अपडेट देना चाहूंगा। पिछले एक साल में आप ऐसे 1,00,000 से ज्यादा लोगों ने मेरी AI मास्टर क्लास को अटेंड किया है और इसी से ही रिलेटेड एक खुशखबरी देनी है कि इस महीने 26 अप्रैल को आ रही है AI मास्टर क्लास 3.0। नए अपडेट्स, नए टूल्स और नई नॉलेज के साथ इस क्लास को दोबारा से रीडिजाइन किया गया है। आपने जितना सब फीडबैक दिया था पिछली क्लासेस में उस सबको इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की गई है और रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स ऐड किए गए हैं और 2026 में आई सारी नई टेक्नोलॉजी के अपडेट्स कवर किए गए हैं। तो अगर आपने पिछले साल कोई मास्टर क्लास का सेशन अटेंड किया था इस महीने का सेशन डेफिनेटली ज्वाइन करना क्योंकि बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। और अगर आपने पहले कभी कोई सेशन अटेंड नहीं किया है तो ये सबसे अच्छा टाइम है शुरू करने का। ज्वाइन करने का लिंक नीचे पिन कमेंट में और इस QR कोड में आपको मिल जाएगा और इस महीने के सेशन में कई सारे बोनसेस भी आपको मिलेंगे, टूल डायरेक्टरीज, PDF गाइड्स और बहुत कुछ। चलिए अब अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। 8 अक्टूबर 2025 टीटीपी ने खाइबर पख्तूनवा में पाकिस्तान आर्मी के कॉन्वॉय पर एम्बुश किया। 11 पाकिस्तानी सोल्जर्स मारे गए और इसके जवाब में पाकिस्तान ने जो किया वो कुछ ऐसा था जो पहले कभी नहीं किया था। उसने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर डायरेक्ट एयर स्ट्राइक की। टारगेट था टीटीपी का चीफ नूर वली महसूद जो काबुल में रहता था। इस स्ट्राइक में नूर वली तो बच गया लेकिन इसकी वजह से पाकिस्तान और अफगान तालिबान आमने सामने आ गए। तालिबान की सरकार जवाब में पाकिस्तानी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर हमला करती है। कम से कम 23 पाकिस्तानी सैनिक मारे जाते हैं। अफगानिस्तान के भी 9 सैनिक मारे गए। कई दिनों तक क्लैशेस होते रहे और फिर कतर और टर्की की मीडिएशन से सीज फायर हुआ। लेकिन ये सीज फायर दोस्तों एक इल्यूजन था, अभी तो और बड़ी वॉर आनी बाकी थी। पाकिस्तान की मांग सिंपल थी, तालिबान से कहा गया टीटीपी पर एक्शन लो, लेकिन तालिबान ने ऐसा नहीं किया। और यही चीज इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट का सबसे कॉम्प्लिकेटेड हिस्सा है जो ज्यादातर लोग नहीं जानते। इमेजिन करो काबुल में तालिबान का डिफेंस मिनिस्टर एक कमरे में बैठा है, एक तरफ पाकिस्तान धमकी दे रहा है टीटीपी को बंद करो वरना और बम गिराए जाएंगे और दूसरी तरफ उसका इंटेलिजेंस चीफ बोल रहा है अगर हमने टीटीपी को बंद कर दिया तो उनके हजारों फाइटर्स कल आईसिस खुरासान में चले जाएंगे और फिर दोनों तरफ से हमला होगा। आईसिस खुरासान, शॉर्ट में इसे आईसिस के भी कहा जाता है, ये एक और खतरनाक ग्रुप है जो अफगानिस्तान में कई सालों से ऑपरेट कर रहा है। ये तालिबान का सबसे बड़ा राइवल है और तालिबान को इसी चीज का डर है, अगर टीटीपी को बंद करवाया तो उसके लोग इस ग्रुप के साथ जुड़ जाएंगे और प्रॉब्लम सॉल्व होने की जगह दो प्रॉब्लम खड़ी हो जाएंगी। अब पाकिस्तान टीटीपी को बर्दाश्त नहीं कर सकता क्योंकि वो उसके लोगों को मार रहा है और तालिबान टीटीपी को छोड़ नहीं सकता। तो ये एक ऐसा गहरा गड्ढा है जिसमें दोनों तरफ से बाहर निकलने का रास्ता दिख नहीं रहा और इसी गड्ढे ने फुल स्केल वॉर को शुरू किया। फरवरी 2026 के आखिरी दो हफ्तों में सब कुछ बड़ी तेजी से हुआ। 16 फरवरी को टीटीपी ने बॉर्डर चेकपॉइंट पर एक हमला किया जिसमें 11 सिक्योरिटी पर्सनल और एक बच्चे की मौत हुई। पाकिस्तान ने जवाबी एयर स्ट्राइक की और फिर तालिबान ने वो किया जो किसी ने इमेजिन नहीं किया था। तालिबान ने बॉर्डर पर पाकिस्तान के खिलाफ फुल स्केल मिलिट्री ऑफेंसिव लॉन्च कर दिया। ये कोई छोटी मोटी फायरिंग नहीं थी, ये एक ऑर्गेनाइज्ड क्रॉस बॉर्डर ऑफेंसिव था। जवाब में पाकिस्तान ओपन वॉर का ऐलान कर देता है।
1: अफगान तालिबान रजीम हैज टू मेक ए क्लियर चॉइस, द टेररिस्ट एंड द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड बिटवीन पाकिस्तान।
0: 27 फरवरी को पाकिस्तान काबुल, कांधार और पाक्तिया प्रोविंस में एयर स्ट्राइक करता है। तालिबान के ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स और एम्यूनेशन डिपोज को टारगेट किया जाता है। कांधार पर की गई स्ट्राइक्स स्पेशली सिग्निफिकेंट थी क्योंकि कांधार तालिबान का स्पिरिचुअल बर्थ प्लेस है और तालिबान का सीक्रेटिव लीडर हिबतुल्ला अखुंदजादा यहीं रहता है। पाकिस्तान एक साफ मैसेज देना चाह रहा था तालिबान को कि हम तुम्हारी लीडरशिप को डायरेक्टली टारगेट कर सकते हैं। 26 फरवरी से 13 मार्च के बीच सिर्फ 15 दिनों में 76 आम लोगों की मौत हुई, 213 घायल हुए और 1,00,000 से ज्यादा लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा है। लेकिन फिर आया 16 मार्च का दिन जो इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट का सबसे काला दिन था। काबुल के पास एक हॉस्पिटल है, ओमिद एडिक्शन ट्रीटमेंट हॉस्पिटल। रमजान का महीना चल रहा था, अंदर लोग इलाज करवा रहे थे, कुछ नशे की लत छोड़ने की कोशिश कर रहे थे तो कुछ के परिवार उनके पास बैठे थे, बच्चे भी थे। और तभी पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक आई।

0: अफगानिस्तान के मुताबिक इस हमले में 400 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। 400 लोग, मरने वालों में बच्चे भी शामिल थे। पाकिस्तान ने कहा कि उसने टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया था, हॉस्पिटल को नहीं। लेकिन तस्वीरें और वीडियोस सब सच बता देती हैं। मलबे में गिरे हुए हॉस्पिटल के बिस्तर दिख रहे हैं, दवाइयां दिख रही हैं और लोगों की चीख सुनाई दे रही है। रमजान के महीने में एक हॉस्पिटल पर बम गिराना, दुनिया भर में इस चीज को लेकर इतनी आउटरेज हुई कि पाकिस्तान को मजबूर होकर ईद तक एयर स्ट्राइक्स को रोकना पड़ा। लेकिन ये सीज फायर सिर्फ एक पॉज था, टेम्पररी था। 26 मार्च को पाकिस्तान ने फिर से हमला शुरू कर दिया। इस वॉर की मिलिट्री रियलिटी ये है कि दोनों साइडों में से ना ही कोई हार सकता है ना ही कोई जीत सकता है। अफगानिस्तान की आर्मी एक कन्वेंशनल वॉर में पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकती। उनके पास कोई एयरफोर्स नहीं है और पाकिस्तान एयर स्पेस कम्प्लीटली डोमिनेट करता है। इसी कारण से तालिबान को कामिकाजे ड्रोन्स जैसे अनकन्वेंशनल मेथड्स पर डिपेंड होना पड़ रहा है। लेकिन फिर भी तालिबान को इस वॉर में एक बड़ा मौका दिख रहा है। तालिबान को पता है कि अफगानिस्तान की सॉवरेनिटी के लिए पाकिस्तान से लड़कर वो अपने देश के लोगों की नजर में नेशनल हीरो बन सकता है, जो उसे एक लेजिटिमेसी प्रदान करेगा। पाकिस्तान ग्राउंड इन्वेजन भी नहीं कर सकता क्योंकि अफगानिस्तान गोरिल्ला वॉरफेयर के लिए बनी हुई जमीन है और तालिबान फाइटर्स इसमें एक्सपर्ट्स हैं। हिस्ट्री भी यही बताती है। सोवियत यूनियन ने 10 साल तक कोशिश करी अफगान्स को इन्वेड करने, अमेरिका 20 साल तक लड़ा लेकिन दोनों हार गए। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस वॉर का मोस्ट लाइकली आउटकम एक कोअर्सिव डिप्लोमेसी है, यानी पहले फाइटिंग होगी, फिर सीज फायर और फिर फाइटिंग शुरू हो जाएगी। एंडलेस साइकिल चलती रहेगी जब तक टीटीपी से संबंधित फंडामेंटल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, कोई सीज फायर टिकेगा नहीं। लेकिन इस पूरी कहानी में एक एंगल है जो बहुत कम डिस्कस हो रहा है और शायद ये सबसे इम्पोर्टेंट एंगल है। पाकिस्तान ने तालिबान को क्यों फंड किया था? इंडिया के खिलाफ स्ट्रेटेजिक डेप्थ के लिए। अफगानिस्तान को एक ऐसी जगह बनाओ जो इंडिया के खिलाफ बफर जोन का काम करे। ये पाकिस्तान की अफगानिस्तान पॉलिसी का फाउंडेशन था। लेकिन अब देखिए हो क्या रहा है। वही तालिबान जो पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ बनाया, वो अब इंडिया के साथ ट्रेड एग्रीमेंट्स कर रहा है। इंडियन कंपनीज को कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं और तालिबान ने इंडिया को अपना एक इम्पोर्टेंट पार्टनर मानना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान ने तालिबान को बनाया, तालिबान ने टीटीपी को पनाह दी, टीटीपी ने पाकिस्तान पर हमले किए और अब पाकिस्तान अपनी ही बनाई हुई आग को बुझाने की कोशिश में पूरे अफगानिस्तान को जला रहा है। सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान अपनी ही जलाई हुई आग को बुझा पाएगा और कितने मासूम लोगों को यहाँ पर अपनी जान गंवानी पड़ेगी? आपको क्या लगता है दोस्तों, नीचे कमेंट्स में लिखकर बताइए। और तालिबान के इतिहास के बारे में अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हैं तो इस वाले वीडियो में समझ सकते हैं यहाँ क्लिक करके। और AI मास्टर क्लास 3.0 को ज्वाइन करना मत भूलना, यहाँ क्लिक कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: सँगै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चीनलाई समेत कड़ा चेतावनी दिँदै इरानलाई नयाँ हतियार प्रणाली उपलब्ध गराएमा त्यसको गम्भीर परिणाम भोग्नुपर्ने धम्की दिएका छन्। अमेरिकी गुप्तचर निकायहरूले आगामी हप्ताहरूमा इरानले चीनबाट तेस्रो देशको माध्यम प्रयोग गरी अत्याधुनिक हवाई रक्षा प्रणाली प्राप्त गर्न सक्ने संकेत पाएपछि ट्रम्पले यस्तो कड़ा प्रतिक्रिया दिएका हुन्। एकातिर इरानले अमेरिकी शर्तहरूलाई अत्यधिक कड़ा र एकपक्षीय भन्दै अस्वीकार गरेको छ भने अर्कोतिर चीनले हतियार आपूर्तिको मात्रा बढ़ाएसँगै मध्यपूर्वको संकट अब झन जटिल र बहुपक्षीय सैन्य टकरावको दिशामा अघि बढ़ने संकेत गरिरहेको छ। दर्शकवृन्द, आउनुहोस् आजको यस श्रृंखलामा हामी शान्तिवार्ताको आवरणमा बुनिएको कूटनीतिक षड्यन्त्र, हर्मुजमा अमेरिकी युद्धपोतको रहस्यमय मुभमेन्ट र इजरायलले वार्तालाई कसरी निष्कर्षविहीन बनायो भन्ने बारेमा विशेष चर्चा गर्नेछौ। पाकिस्तानको मध्यस्थतामा इस्लामाबादमा भएको ऐतिहासिक फेस टू फेस वार्ता अन्तत 21 घण्टाको सघन छलफलपछि पनि कुनै ठोस सम्झौता बिना समाप्त हुन पुग्यो। आइतबार एक पत्रकार सम्मेलन गर्दै अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी भान्सले वार्ताको नराम्रो खबर सुनाउँदै इरानसँग सहमति हुन नसकेको आधिकारिक जानकारी दिएका थिए। भान्सका अनुसार 21 घण्टासम्म निकै गम्भीर र ठोस छलफलहरू भए तापनि इरानले अमेरिकी रेडलाइन अस्वीकार गरेपछि वार्ता बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको हो। इस्लामाबाद वार्ताका मुख्य मुद्दाहरू। अप्रिल 2026 पाकिस्तानको मध्यस्थतामा आयोजित इस्लामाबाद वार्ता 21 घण्टाको सघन छलफलपछि पनि कुनै ठोस सम्झौता बिना समाप्त हुनुमा दशकौंदेखि बल्झिरहेका 5 मुख्य मुद्दाहरू बाधक देखिएका छन्। यो वार्ता केवल एउटा प्राविधिक छलफल

0: सोबारको डाँडानिर गएर तलवारले काटिदिएका थिए अनि त्यस पछाडि उपत्यकाको सबै पानी बगेर गएको थियो। अब केही धार्मिक ग्रन्थहरू अनुसार भने त्यसको केही समय पछाडि बनासुरा नाम गरेका एउटा राक्षस काठमाडौँ आएर फेरि चोबार बन्द गरिदिएका थिए र उपत्यकामा फेरि पानी भरिएको थियो। त्यो थाहा पाए पछाडि भगवान कृष्ण नेपाल आएर बनासुराको अन्त्य गरी उनले आफ्नो सुदर्शन चक्रले चोबार फेरि काटिदिएका थिए। काठमाडौँ फेरि रहन लायक बनेको थियो। अरू केही गाई गोठहरू पनि उनले आफूसँगै लिएर आएका थिए। तिनै गोठालाहरू मध्येका एक भुक्तमानलाई उनले काठमाडौँको पहिलो राजा बनाए र गोपाल वंशीय शासनको सुरुवात गरिदिए। समयसँगै काठमाडौँमा महिषपाल, किराँत, लिच्छपी, मल्ल जस्ता भिन्न भिन्न वंशहरूले शासन गर्न थाले। यसरी पनि काठमाडौँ हिस्टोरिकल्ली इम्पोर्टेन्ट हुँदै गयो। त्यसबाहेक काठमाडौँ पहिलादेखि नै एक ऐतिहासिक र सांस्कृतिक सम्पदाको धनी थियो। प्राचीन समयदेखि नै काठमाडौँ व्यापार, संस्कृति र प्रशासनिक क्षेत्रको महत्वपूर्ण केन्द्र थियो। काठमाडौँ किराँत वंशीय राजाहरूको समयमा तिब्बत र इन्डिया बीचको व्यापारका लागि अत्यन्तै महत्वपूर्ण मार्ग थियो। इन्डियाबाट आएका व्यापारीहरू यही बस्ने भएकाले काठमाडौँमा सधैँ बेग्लै प्रकारको उल्लास र रमझम हुन्थ्यो। सँगसँगै काठमाडौँ निवासीहरूले यसबाट आर्थिक लाभ पनि लिइरहेका थिए। भारतीय व्यापारीसँग राम्रो सम्बन्ध बनाएका नेवारहरूले बिस्तारै भारतको माध्यमबाट तिब्बतसँग व्यापार गर्न थालेका थिए। अब तिब्बतसँग नै राम्रो व्यापारिक सम्बन्ध बनाएका नेवारहरूले त्यहाँका स्थानीय उत्पादनलाई पनि निर्यात गर्न थाले। काठमाडौँ थोरै समयमा धेरै नै अगाडि बढिसकेको थियो। कला, कौशल अनि सांस्कृतिक धरोहरको धनी काठमाडौँ अब आर्थिक तवरबाट पनि धनी बन्दै थियो। त्यो बाहेक काठमाडौँको माटो एकदमै उर्वर थियो। यहाँ धान, मकै, कोदो, लसुन, बन्दा, काउली जस्ता अन्नहरू मनग्ग फल्ने गर्थे। त्यो बाहेक तोरी, उखु, कपास, बेसा र अदुवा जस्ता नगदे बालीहरू पनि फलाइने गरिन्थ्यो र यो कुरालाई काठमाडौँको बागमती, विष्णुवती र मनोहरा जस्ता नदीहरूको प्रत्यक्ष पहुँचले पनि सजिलो बनाउँथ्यो। किसानहरूलाई रायश्वरी नहरको माध्यमबाट खेतमा पानी पुर्याउन धेरै नै सजिलो भएको थियो। यसरी आफ्नो सहरलाई पुग्ने अन्न उत्पादन साथै विभिन्न नगदे बाली उत्पादन गर्नाले यहाँका किसानहरूले राम्रो मुनाफा आर्जन गरिरहेका थिए। यसरी थोरै समयमा काठमाडौँ नेपालको प्रशासनिक, आर्थिक र राजनीतिक केन्द्र बनिसकेको थियो। नेपालका अधिकांश सरकारी कार्यालय, राजदरबार, विदेशी दूतावास र अरू महत्वपूर्ण कार्यालय पनि काठमाडौँभित्रै बन्दै गए। काठमाडौँ संस्कृति, परम्परा, वस्तुकला र मानव सभ्यताका तवरले हेर्दा पनि सिङ्गो नेपालको राजधानीको रूपमा उचित देखियो। पृथ्वीनारायण शाहको एकीकरण अभियान भन्दा धेरै अगाडिदेखि नै काठमाडौँले भारत र तिब्बत बीचको व्यापारिक केन्द्रको रूपमा काम गर्थ्यो र दुवै देशसँग राम्रो व्यापारिक सम्बन्ध बनाइसकेको थियो। यसरी हेर्दा स्थानीय उत्पादनले बजार पाउने र बाहिरबाट सामान आयात गर्न पनि सजिलो हुने देखियो। अनि लोकेसन वाइज पनि काठमाडौँ उपत्यका लगभग नेपालको बीचतिरै पर्थ्यो। यसरी सेन्ट्रल लोकेसनलाई देशको राजधानी बनाउँदा देशका विभिन्न क्षेत्रबाट प्रशासनिक सुविधा लिन सजिलो हुने पनि देखियो। अनि अर्को मुख्य कुरा जसका कारण पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौँलाई राजधानी बनाए त्यो के थियो भने काठमाडौँको चारैतिर अग्ला डाँडाहरूले छेकेको थियो, जसले देशको पोलिटिक्स र एडमिनिस्ट्रेसनको लागि नेचुरल डिफेन्सको रूपमा काम गर्थ्यो। अरूलाई अट्याक गर्न पनि सजिलो र आफूमाथि हुने अट्याकलाई पनि सजिलै आकलन गर्न सकिने भएकाले उनको एकीकरण अभियानलाई नै काठमाडौँले सहज बनाएको थियो। अब अहिले काठमाडौँ विदेशी पर्यटकका लागि प्रवेशद्वारको रूपमा काम गर्छ। यहाँ रहेका विभिन्न सांस्कृतिक र ऐतिहासिक धरोहर र मनमोहक वस्तुकलाका नमुनाहरूमा विदेशी पर्यटकहरू खुबै लोभिन्छन्। स्वयम्भूनाथ, बौद्धनाथ, पशुपतिनाथ र काठमाडौँ दरबार स्क्वायर जस्ता वर्ल्ड हेरिटेज साइटमा सुस्वीकृत संरचनाहरू पनि यही नै रहेका छन्। नेपालको केन्द्रीय ब्याङ्क, नेपाल राष्ट्रिय ब्याङ्क, अन्य वाणिज्य ब्याङ्क र ठूलो उद्योग व्यवसाय पनि काठमाडौँमै रहेका छन्। काठमाडौँ नेपालको केन्द्रमा पर्छ, जसले गर्दा पूर्व र पश्चिम दुवैतर्फका जिल्लाबाट राजधानी आएर प्रशासनिक सेवा लिन पनि सहज भएको छ। अरू देशका राजदूतावास, सार्क सचिवालय, युनाइटेड नेसन्स र विभिन्न आईएनजीओहरू पनि यही रहेका छन्। यस्ता संस्थाहरूले विश्वव्यापी रूपमा काठमाडौँको महत्व दर्शाउने गर्छन्। काठमाडौँ नेपालको फाइनेन्सियल हब पनि हो। विभिन्न व्यावसायिक हेडक्वार्टर पनि यही नै अवस्थित छन्। यसरी हेर्दा काठमाडौँलाई नेपालको राजधानीको रूपमा घोषित गरिनुको श्रेय भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, प्रशासनिक, आर्थिक र राजनीतिक पक्षलाई नै जान्छ। काठमाडौँको सेन्ट्रल लोकेसन, आर्थिक वृद्धि, भाइब्रेन्ट अर्बन एटमोस्फियर, बढ्दो पर्यटन, डाइभर्स कल्चरल भ्यालुज आदि कुराले गर्दा पनि काठमाडौँ नै देशको राजधानी बन्नका लागि बेस्ट अप्सन थियो र अहिले पनि बेस्ट अप्सन नै छ भन्दा फरक नपर्ला। त्यसो त केही समय यता नेपालको राजधानी काठमाडौँबाट हटाएर अरू नै कुनै ठाउँमा सार्नुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि उठिरहेको छ। यदि त्यसो गर्ने हो भने काठमाडौँ जतिकै हिस्टोरिकल, कल्चरल र एडमिनिस्ट्रेटिभ इम्पोर्टेन्स भएको अरू कुन ठाउँ छ त, त्यसमा बहस हुन आवश्यक छ। तपाईँ यो विषयमा के सोच्नुहुन्छ त कमेन्टमा भन्नुहोला र नेपालको एकीकरणका यी तीन भिडियोहरू पनि हेर्न नछुटाउनुहोला। हस्त, थ्याङ्क यू फर वाचिङ।
1: 2026 इस्लामाबाद का रावलपिंडी गैरिसन, पाकिस्तान के सबसे पावरफुल जनरल्स एक कमरे में बैठे हैं। सामने स्क्रीन पर है सैटेलाइट इमेजेस, काबुल की सड़कें, टीटीपी के ठिकाने और तालिबान के एम्युनिशन डिपो। इन जनरल्स के सामने एक बड़ी अजीब सी मुश्किल आ खड़ी है, क्योंकि जिन्हें इन्होंने खुद बनाया था आज उन्हीं को निशाना बनाना पड़ रहा है। नमस्कार दोस्तों, 27 फरवरी 2026 पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने कुछ ऐसा कहा जो किसी ने इमेजिन नहीं किया था। उन्होंने कहा, हमारा सब्र अब टूट चुका है, अब ये हमारे बीच एक ओपन वॉर है। अब नॉर्मली पाकिस्तान का इतिहास देखें तो कोई भी अज्यूम करेगा कि ये इंडिया से वॉर की बात कर रहे होंगे, लेकिन नहीं, ये स्टेटमेंट अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को लेकर थी। वही तालिबान जिसे पाकिस्तान ने खुद खड़ा किया, जिसे पाकिस्तान की ISI ने ट्रेन किया, फंड किया और दशकों तक सपोर्ट किया, आज उसी तालिबान के खिलाफ पाकिस्तान ने खुली जंग का ऐलान कर दिया है। हर एक वॉर की तरह इस वॉर की कीमत भी आम लोगों को चुकानी पड़ रही है। हर हफ्ते 100 से ज्यादा आम लोग मर रहे हैं, यानी हर दिन के लगभग 15 लोग। इसमें अस्पतालों पर हमले किए जा रहे हैं, बच्चों की मौत हो रही है, लेकिन सवाल ये कि आखिर ये सब शुरू क्यों हुआ? जिस तालिबान को पाकिस्तान ने बनाया वो पाकिस्तान का ही सबसे बड़ा नाइटमेयर कैसे बन गया? ये कहानी इतनी सिंपल नहीं है जितनी देखने में लगती है, क्योंकि इसमें जो ट्विस्ट है वो पाकिस्तान के जनरल्स ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। साल 1994, अफगानिस्तान की धूल भरी सड़कों पर एक कॉन्वॉय चल रहा है। इसमें बैठे हैं ISI के ऑफिसर्स और उनके साथ एक आदमी जिसका नाम है मुल्ला ओमर। एक आंख से अंधा, पगड़ी बांधे ये इंसान जो एक छोटे से मदरसे में पढ़ाता था। ISI के ऑफिसर्स उसे एक डील ऑफर करते हैं, हम तुम्हें हथियार देंगे, पैसे देंगे, ट्रेनिंग देंगे, लेकिन तुम्हें हमारे लिए बस एक काम करना है, अफगानिस्तान पर कब्जा करो और हमारा कहना मानो। असल में इस डील का आइडिया 1990 के दशक में पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी को आया था, जब अफगानिस्तान सिविल वॉर में डूबा हुआ था। उनका आइडिया था कि अगर अफगानिस्तान में एक फ्रेंडली सरकार बिठाएंगे हम तो इंडिया के खिलाफ एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिलेगी। तालिबान के लीडर मुल्ला ओमर इस डील को एक्सेप्ट कर लेते हैं। ISI रिस्पॉन्स में ऑयल के टैंकर भेजता है, हथियारों की खेप भेजता है और पाकिस्तान के अंदर मौजूद मदरसे तालिबान के रिक्रूटमेंट सेंटर बन जाते हैं। सिर्फ 2 साल के अंदर अंदर 1996 में तालिबान काबुल पर कब्जा करने में सक्सेसफुल हो जाता है। अफगानिस्तान में तालिबान की नई सरकार बनती है। उस वक्त दुनिया में सिर्फ 3 देश थे जिन्होंने तालिबान की सरकार को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया, पाकिस्तान उनमें से एक था। लेकिन फिर साल 2001 में अमेरिका पर सबसे खौफनाक आतंकी हमला होता है। अमेरिका जवाब में तालिबान की सरकार गिरा देता है। पब्लिकली देखा जाए तो पाकिस्तान अमेरिका का इस मौके पर साथ देता है, लेकिन सीक्रेटली वो तालिबान को सेफ हेवन, ट्रेनिंग और पैसा सब कुछ दे रहा था। पाकिस्तान का ये डबल गेम 20 सालों तक चला और जब 2021 में अमेरिका निकल गया, तालिबान वापस पावर में आया, तो उस वक्त के पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा, अफगान्स ने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं।
2: ज़हनी गुलामी की जंजीरें तोड़ना ज्यादा मुश्किल होता है, जो अभी अफगानिस्तान में गुलामी की जंजीरें तो तोड़ दी उन्होंने।
1: जैसे तालिबान की जीत पाकिस्तान की अपनी जीत हो। पाकिस्तान को लगा कि अब उसके पपेट वापस गद्दी पर बैठ गए हैं, लेकिन पाकिस्तान ने एक चीज कैलकुलेट नहीं करी थी, जो ताकत तुम धार्मिक कट्टरता से पैदा करते हो वो कभी तुम्हारी नहीं रहती, वो अपने रूल्स से खेलती है और वही ताकत अब पाकिस्तान की तरफ मुड़ चुकी थी। यहीं पर एंट्री होती है तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान की, शॉर्ट फॉर्म TTP। इसको पाकिस्तानी तालिबान भी बुलाया जाता है। ये वो लोग थे जो ISI के मदरसों में पढ़े थे, अफगान तालिबान के साथ लड़े थे, लेकिन जब से पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ दिया था अमेरिका की वॉर ऑन टेरर पर, तब से ये पाकिस्तान के खिलाफ हो गए थे। TTP का मकसद सिर्फ एक है, पाकिस्तान की इलेक्टेड सरकार को गिराकर शरिया लॉ लागू करना। यूनाइटेड नेशंस ने इसे आतंकी संगठन भी डिक्लेयर किया हुआ है और इस मकसद के लिए TTP ने पाकिस्तान में खून की नदियां बहाई। जैसे कि दिसंबर 2014, इमेजिन करके देखो, पेशावर का आर्मी पब्लिक स्कूल, सुबह के 10 बज रहे हैं, बच्चे अपने क्लासरूम में बैठे हैं, कोई मैथ्स का सवाल सॉल्व कर रहा है तो कोई अपने दोस्त से बातें कर रहा है, उनके बैग्स में टिफिन बॉक्सेस हैं जो उनकी माओं ने सुबह पैक करके भेजे हैं, और तभी गनशॉट्स की आवाज सुनाई देती है। टीटीपी के आतंकियों ने एक एक क्लासरूम में जाके गोलियां चलाई। 132 बच्चे मारे गए, 132 बच्चे जिनकी उम्र 8 से 18 साल के बीच थी। टीचर्स ने बच्चों को बचाने की कोशिश की।

0: टीचर ताहिरा काजी ने अपने स्टूडेंट के सामने खड़े होकर बोल दिया था। कुल 149 लोग मारे गए उस दिन। ये पाकिस्तान के इतिहास का सबसे काला दिन था। 2021 में तालिबान के पावर में आने के बाद से पिछले 5 सालों में टीटीपी के हमले और भी ज्यादा बढ़ गए हैं। 2024 में 2236 लोगों की टेररिज्म रिलेटेड इंसिडेंट्स में मौत हुई पाकिस्तान में, जबकि 2025 में ये नंबर बढ़कर 4001 हो गया, ऑलमोस्ट डबल। ये बात इस हद तक बढ़ गई है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनिर ने टीटीपी को फंडामेंटल एनिमी कहा है। लेकिन यहीं पर ये सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड बन जाती है। असल में टीटीपी खुद को अफगान तालिबान का एक्सटेंशन बताता है। उसने अफगान तालिबान को एलिजियंस प्लेज की हुई है और अफगान तालिबान ने टीटीपी को अपनी टेरिटरी में सेफ हेवन दे रखा है। सोचकर देखो कितनी अजीब बात है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान के सबसे पुराने दोस्त के घर में बैठा है। ये ठीक वैसा ही है जैसा पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ किया था ओसामा बिन लादेन को शरण देकर। अब यही चीज तालिबान पाकिस्तान के साथ कर रहा है। और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक क्विक अपडेट देना चाहूंगा। पिछले 1 साल में आप ऐसे 1 लाख से ज्यादा लोगों ने मेरी AI मास्टर क्लास को अटेंड किया है और इसी से ही रिलेटेड एक खुशखबरी देनी है कि इस महीने 26 अप्रैल को आ रही है AI मास्टर क्लास 3.0। नए अपडेट्स, नए टूल्स और नई नॉलेज के साथ इस क्लास को दोबारा से रीडिजाइन किया गया है। आपने जितना सब फीडबैक दिया था पिछली क्लासेस में उस सब को इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की गई है और रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स ऐड किए गए हैं और 2026 में आई सारी नई टेक्नोलॉजी के अपडेट्स कवर किए गए हैं। तो अगर आपने पिछले साल कोई मास्टर क्लास का सेशन अटेंड किया था, इस महीने का सेशन डेफिनेटली ज्वाइन करना क्योंकि बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। और अगर आपने पहले कभी कोई सेशन अटेंड नहीं किया है तो ये सबसे अच्छा टाइम है शुरू करने का। ज्वाइन करने का लिंक नीचे पिंड कमेंट में और इस QR कोड में आपको मिल जाएगा और इस महीने के सेशन में कई सारे बोनसेस भी आपको मिलेंगे, टूल डायरेक्टरीज, PDF गाइड्स और बहुत कुछ। चलिए अब अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। 8 अक्टूबर 2025 टीटीपी ने खैबर पख्तूनवा में पाकिस्तान आर्मी के कॉन्वॉय पर एम्बुश किया। 11 पाकिस्तानी सोल्जर्स मारे गए और इसके जवाब में पाकिस्तान ने जो किया वो कुछ ऐसा था जो पहले कभी नहीं किया था। उसने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर डायरेक्ट एयर स्ट्राइक की। टारगेट था टीटीपी का चीफ नूर वली महसूद जो काबुल में रहता था। इस स्ट्राइक में नूर वली तो बच गया लेकिन इसकी वजह से पाकिस्तान और अफगान तालिबान आमने सामने आ गए। तालिबान की सरकार जवाब में पाकिस्तानी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर हमला करती है। कम से कम 23 पाकिस्तानी सैनिक मारे जाते हैं, अफगानिस्तान के भी 9 सैनिक मारे गए। कई दिनों तक क्लैशेस होते रहे और फिर कतर और टर्की की मीडिएशन से सीज फायर हुआ। लेकिन ये सीज फायर दोस्तों एक इल्यूजन था, अभी तो और बड़ी वॉर आनी बाकी थी। पाकिस्तान की मांग सिंपल थी, तालिबान से कहा गया टीटीपी पर एक्शन लो, लेकिन तालिबान ने ऐसा नहीं किया। और यही चीज इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट का सबसे कॉम्प्लिकेटेड हिस्सा है जो ज्यादातर लोग नहीं जानते। इमेजिन करो काबुल में तालिबान का डिफेंस मिनिस्टर एक कमरे में बैठा है, एक तरफ पाकिस्तान धमकी दे रहा है टीटीपी को बंद करो वरना और बम गिराए जाएंगे और दूसरी तरफ उसका इंटेलिजेंस चीफ बोल रहा है अगर हमने टीटीपी को बंद कर दिया तो उनके हजारों फाइटर्स कल आइसिस खुरासान में चले जाएंगे और फिर दोनों तरफ से हमला होगा। आइसिस खुरासान, शॉर्ट में से आइसिस के भी कहा जाता है, ये एक और खतरनाक ग्रुप है जो अफगानिस्तान में कई सालों से ऑपरेट कर रहा है। ये तालिबान का सबसे बड़ा राइवल है और तालिबान को इसी चीज का डर है, अगर टीटीपी को बंद करवाया तो उसके लोग इस ग्रुप के साथ जुड़ जाएंगे और प्रॉब्लम सॉल्व होने की जगह 2 प्रॉब्लम खड़ी हो जाएंगी। अब पाकिस्तान टीटीपी को बर्दाश्त नहीं कर सकता क्योंकि वो उसके लोगों को मार रहा है और तालिबान टीटीपी को छोड़ नहीं सकता, तो ये एक ऐसा गहरा गड्ढा है जिसमें दोनों तरफ से बाहर निकलने का रास्ता दिख नहीं रहा और इसी गड्ढे ने फुल स्केल वॉर को शुरू किया। फरवरी 2026 के आखिरी 2 हफ्तों में सब कुछ बड़ी तेजी से हुआ। 16 फरवरी को टीटीपी ने बॉर्डर चेक पॉइंट पर एक हमला किया जिसमें 11 सिक्योरिटी पर्सनल और एक बच्चे की मौत हुई। पाकिस्तान ने जवाबी एयर स्ट्राइक की और फिर तालिबान ने वो किया जो किसी ने इमेजिन नहीं किया था। तालिबान ने बॉर्डर पर पाकिस्तान के खिलाफ फुल स्केल मिलिट्री ऑफेंसिव लॉन्च कर दिया। ये कोई छोटी मोटी फायरिंग नहीं थी, ये एक ऑर्गेनाइज्ड क्रॉस बॉर्डर ऑफेंसिव था। जवाब में पाकिस्तान ओपन वॉर का ऐलान कर देता है।
1: अफगान तालिबान रिजीम हैज टू मेक ए क्लियर चॉइस, द टेररिस्ट एंड द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड बिटवीन पाकिस्तान।
0: 27 फरवरी को पाकिस्तान काबुल, कांधार और पाक्तिया प्रोविंस में एयर स्ट्राइक करता है। तालिबान के ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स और एम्यूनिशन डिपोज को टारगेट किया जाता है। कांधार पर की गई स्ट्राइक्स स्पेशली सिग्निफिकेंट थी क्योंकि कांधार तालिबान का स्पिरिचुअल बर्थ प्लेस है और तालिबान का सीक्रेटिव लीडर हिबतुल्ला अखुंजादा यहीं रहता है। पाकिस्तान एक साफ मैसेज देना चाह रहा था तालिबान को कि हम तुम्हारी लीडरशिप को डायरेक्टली टारगेट कर सकते हैं, 26 फरवरी से 13 मार्च के बीच सिर्फ 15 दिनों में 76 आम लोगों की मौत हुई, 213 घायल हुए और 1,00,000 से ज्यादा लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा है। लेकिन फिर आया 16 मार्च का दिन, जो इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट का सबसे काला दिन था। काबुल के पास एक हॉस्पिटल है, ओमिद एडिक्शन ट्रीटमेंट हॉस्पिटल। रमजान का महीना चल रहा था, अंदर लोग इलाज करवा रहे थे, कुछ नशे की लत छोड़ने की कोशिश कर रहे थे, तो कुछ के परिवार उनके पास बैठे थे, बच्चे भी थे। और तभी पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक आई। अफगानिस्तान के मुताबिक इस हमले में 400 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, 400 लोग, मरने वालों में बच्चे भी शामिल थे। पाकिस्तान ने कहा कि उसने टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया था, हॉस्पिटल को नहीं। लेकिन तस्वीरें और वीडियोस सब सच बता देती हैं। मलबे में गिरे हुए हॉस्पिटल के बिस्तर दिख रहे हैं, दवाइयां दिख रही हैं और लोगों की चीख सुनाई दे रही है। रमजान के महीने में एक हॉस्पिटल पर बम गिराना, दुनिया भर में इस चीज को लेकर इतनी आउटरेज हुई कि पाकिस्तान को मजबूर होकर ईद तक एयर स्ट्राइक्स को रोकना पड़ा। लेकिन ये सीज फायर सिर्फ एक पॉज था, टेम्पररी था। 26 मार्च को पाकिस्तान ने फिर से हमला शुरू कर दिया। इस वॉर की मिलिट्री रियलिटी ये है कि दोनों साइडों में से ना ही कोई हार सकता है ना ही कोई जीत सकता है। अफगानिस्तान की आर्मी एक कन्वेंशनल वॉर में पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकती, उनके पास कोई एयरफोर्स नहीं है और पाकिस्तान एयर स्पेस कम्प्लीटली डोमिनेट करता है। इसी कारण से तालिबान को कामिकाजे ड्रोन्स जैसे अनकन्वेंशनल मेथड्स पर डिपेंड होना पड़ रहा है। लेकिन फिर भी तालिबान को इस वॉर में एक बड़ा मौका दिख रहा है। तालिबान को पता है कि अफगानिस्तान की सॉवरेनिटी के लिए पाकिस्तान से लड़कर वो अपने देश के लोगों की नजर में नेशनल हीरो बन सकता है, जो उसे एक लेजिटिमेसी प्रदान करेगा। पाकिस्तान ग्राउंड इन्वेजन भी नहीं कर सकता क्योंकि अफगानिस्तान गोरिल्ला वॉरफेयर के लिए बनी हुई जमीन है और तालिबान फाइटर्स इसमें एक्सपर्ट्स हैं। हिस्ट्री भी यही बताती है, सोवियत यूनियन ने 10 साल तक कोशिश करी अफगान्स को इन्वेड करने, अमेरिका 20 साल तक लड़ा लेकिन दोनों हार गए। एक्सपर्ट के मुताबिक इस वॉर का मोस्ट लाइकली आउटकम एक कोअर्सिव डिप्लोमेसी है, यानी पहले फाइटिंग होगी, फिर सीज फायर और फिर फाइटिंग शुरू हो जाएगी। एंडलेस साइकिल चलती रहेगी जब तक टीटीपी से संबंधित फंडामेंटल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, कोई सीज फायर टिकेगा नहीं। लेकिन इस पूरी कहानी में एक एंगल है जो बहुत कम डिस्कस हो रहा है और शायद ये सबसे इम्पोर्टेंट एंगल है। पाकिस्तान ने तालिबान को क्यों फंड किया था? इंडिया के खिलाफ स्ट्रेटेजिक डेप्थ के लिए। अफगानिस्तान को एक ऐसी जगह बनाओ जो इंडिया के खिलाफ बफर जोन का काम करे, ये पाकिस्तान की अफगानिस्तान पॉलिसी का फाउंडेशन था। लेकिन अब देखिए हो क्या रहा है, वही तालिबान जो पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ बनाया, वो अब इंडिया के साथ ट्रेड एग्रीमेंट्स कर रहा है। इंडियन कंपनीज को कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं और तालिबान ने इंडिया को अपना एक इम्पोर्टेंट पार्टनर मानना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान ने तालिबान को बनाया, तालिबान ने टीटीपी को पनाह दी, टीटीपी ने पाकिस्तान पर हमले किए और अब पाकिस्तान अपनी ही बनाई हुई आग को बुझाने की कोशिश में पूरे अफगानिस्तान को जला रहा है। सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान अपनी ही जलाई हुई आग को बुझा पाएगा और कितने मासूम लोगों को यहाँ पर अपनी जान गंवानी पड़ेगी? आपको क्या लगता है दोस्तों, नीचे कमेंट्स में लिखकर बताइए। और तालिबान के इतिहास के बारे में अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हैं तो इस वाले वीडियो में समझ सकते हैं यहाँ क्लिक करके। और AI मास्टर क्लास 3.2 को ज्वाइन करना मत भूलना, यहाँ क्लिक कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद।
2: सँगै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चीनलाई समेत कड़ा चेतावनी दिँदै इरानलाई नयाँ हतियार प्रणाली उपलब्ध गराएमा त्यसको गम्भीर परिणाम भोग्नुपर्ने धम्की दिएका छन्। अमेरिकी गुप्तचर निकायहरूले आगामी हप्ताहरूमा इरानले चीनबाट तेस्रो देशको माध्यम प्रयोग गरी अत्याधुनिक हवाई रक्षा प्रणाली प्राप्त गर्न सक्ने संकेत पाएपछि ट्रम्पले यस्तो कड़ा प्रतिक्रिया दिएका हुन्। एकातिर इरानले अमेरिकी शर्तहरूलाई अत्यधिक कड़ा र एकपक्षीय भन्दै अस्वीकार गरेको छ भने अर्कोतिर चीनले हतियार आपूर्तिको मात्रा बढ़ाएसँगै मध्यपूर्वको संकट अब झन जटिल र बहुपक्षीय सैन्य टकरावको दिशामा अघि बढ़ने संकेत गरिरहेको छ। दर्शकवृन्द, आउनुहोस् आजको यस श्रृंखलामा हामी शान्तिवार्ताको आवरणमा बुनिएको कूटनीतिक षड्यन्त्र, हर्मुजमा अमेरिकी युद्धपोतको रहस्यमय मुभमेन्ट र इजरायलले वार्तालाई कसरी निष्कर्षविहीन बनायो भन्ने बारेमा विशेष चर्चा गर्नेछौ। पाकिस्तानको मध्यस्थतामा इस्लामाबादमा भएको ऐतिहासिक फेस टू फेस वार्ता अन्तत 21 घण्टाको सघन छलफलपछि पनि कुनै ठोस सम्झौता बिना समाप्त हुन पुग्यो। आइतबार एक पत्रकार सम्मेलन गर्दै अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी भान्सले वार्ताको नराम्रो खबर सुनाउँदै इरानसँग सहमति हुन नसकेको आधिकारिक जानकारी

0: थियो भने काठमाडौँको चारैतिर अग्ला डाँडाहरूले छेकेको थियो, जसले देशको पोलिटिक्स र एडमिनिस्ट्रेसनको लागि नेचुरल डिफेन्सको रूपमा काम गर्थ्यो। अरूलाई अट्याक गर्न पनि सजिलो र आफूमाथि हुने अट्याकलाई पनि सजिलै आकलन गर्न सकिने भएकाले उनको एकीकरण अभियानलाई नै काठमाडौँले सहज बनाएको थियो। अब अहिले काठमाडौँ विदेशी पर्यटकका लागि प्रवेशद्वारको रूपमा काम गर्छ। यहाँ रहेका विभिन्न सांस्कृतिक र ऐतिहासिक धरोहर र मनमोहक वस्तुकलाका नमुनाहरूमा विदेशी पर्यटकहरू खुबै लोभिन्छन्। स्वयम्भूनाथ, बौद्धनाथ, पशुपतिनाथ र काठमाडौँ दरबार स्क्वायर जस्ता वर्ल्ड हेरिटेज साइटमा सूचीकृत संरचनाहरू पनि यही नै रहेका छन्। नेपालको केन्द्रीय ब्याङ्क, नेपाल राष्ट्रिय ब्याङ्क, अन्य वाणिज्य ब्याङ्क र ठूलो उद्योग व्यवसाय पनि काठमाडौँमै रहेका छन्। काठमाडौँ नेपालको केन्द्रमा पर्छ, जसले गर्दा पूर्व र पश्चिम दुवैतर्फका जिल्लाबाट राजधानी आएर प्रशासनिक सेवा लिन पनि सहज भएको छ। अरू देशका राजदूतावास, सार्क सचिवालय, युनाइटेड नेसन्स र विभिन्न आइएनजीओजहरू पनि यही रहेका छन्। यस्ता संस्थाहरूले विश्वव्यापी रूपमा काठमाडौँको महत्व दर्शाउने गर्छन्। काठमाडौँ नेपालको फाइनेन्सियल हब पनि हो, विभिन्न व्यावसायिक हेडक्वार्टर पनि यही नै अवस्थित छन्। यसरी हेर्दा काठमाडौँलाई नेपालको राजधानीको रूपमा घोषित गरिनुको श्रेय भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, प्रशासनिक, आर्थिक र राजनीतिक पक्षलाई नै जान्छ। काठमाडौँको सेन्ट्रल लोकेसन, आर्थिक वृद्धि, भाइब्रेन्ट अर्बन एटमोस्फियर, बढ्दो पर्यटन, डाइभर्स कल्चरल भ्यालुज आदि कुराले गर्दा पनि काठमाडौँ नै देशको राजधानी बन्नका लागि बेस्ट अप्सन थियो र अहिले पनि बेस्ट अप्सन नै छ भन्दा फरक नपर्ला। त्यसो त केही समय यता नेपालको राजधानी काठमाडौँबाट हटाएर अरू नै कुनै ठाउँमा सार्नुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि उठिरहेको छ। यदि त्यसो गर्ने हो भने काठमाडौँ जतिकै हिस्टोरिकल, कल्चरल र एडमिनिस्ट्रेटिभ इम्पोर्टेन्स भएको अरू कुन ठाउँ छ त, त्यसमा बहस हुन आवश्यक छ। तपाईँ यो विषयमा के सोच्नुहुन्छ त कमेन्टमा भन्नुहोला र नेपालको एकीकरणका यी 3 भिडियोहरू पनि हेर्न नछुटाउनुहोला। अस्त, थ्याङ्क यू फर वाचिङ।
1: 2026 इस्लामाबाद का रावलपिंडी गैरिसन, पाकिस्तान के सबसे पावरफुल जनरल्स एक कमरे में बैठे हैं। सामने स्क्रीन पर हैं सैटेलाइट इमेजेस, काबुल की सड़कें, टीटीपी के ठिकाने और तालिबान के एम्युनेशन डिपो। इन जनरल्स के सामने एक बड़ी अजीब सी मुश्किल आ खड़ी है, क्योंकि जिन्हें इन्होंने खुद बनाया था आज उन्हीं को निशाना बनाना पड़ रहा है। नमस्कार दोस्तों, 27 फरवरी 2026 पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने कुछ ऐसा कहा जो किसी ने इमेजिन नहीं किया था। उन्होंने कहा, हमारा सब्र अब टूट चुका है, अब ये हमारे बीच एक ओपन वॉर है। अब नॉर्मली पाकिस्तान का इतिहास देखें तो कोई भी अज्यूम करेगा कि ये इंडिया से वॉर की बात कर रहे होंगे, लेकिन नहीं, ये स्टेटमेंट अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को लेकर थी। वही तालिबान जिसे पाकिस्तान ने खुद खड़ा किया, जिसे पाकिस्तान की ISI ने ट्रेन किया, फंड किया और दशकों तक सपोर्ट किया, आज उसी तालिबान के खिलाफ पाकिस्तान ने खुली जंग का ऐलान कर दिया है। हर एक वॉर की तरह इस वॉर की कीमत भी आम लोगों को चुकानी पड़ रही है। हर हफ्ते 100 से ज्यादा आम लोग मर रहे हैं, यानी हर दिन के लगभग 15 लोग। इसमें अस्पतालों पर हमले किए जा रहे हैं, बच्चों की मौत हो रही है, लेकिन सवाल ये कि आखिर ये सब शुरू क्यों हुआ? जिस तालिबान को पाकिस्तान ने बनाया वो पाकिस्तान का ही सबसे बड़ा नाइटमेयर कैसे बन गया? ये कहानी इतनी सिंपल नहीं है जितनी देखने में लगती है, क्योंकि इसमें जो ट्विस्ट है वो पाकिस्तान के जनरल्स ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। साल 1994, अफगानिस्तान की धूल भरी सड़कों पर एक कॉन्वॉय चल रहा है। इसमें बैठे हैं ISI के ऑफिसर्स और उनके साथ एक आदमी जिसका नाम है मुल्ला उमर। एक आंख से अंधा, पगड़ी बांधे ये इंसान जो एक छोटे से मदरसे में पढ़ाता था। ISI के ऑफिसर्स उसे एक डील ऑफर करते हैं, हम तुम्हें हथियार देंगे, पैसे देंगे, ट्रेनिंग देंगे, लेकिन तुम्हें हमारे लिए बस एक काम करना है, अफगानिस्तान पर कब्जा करो और हमारा कहना मानो। असल में इस डील का आइडिया 1990 के दशक में पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी को आया था, जब अफगानिस्तान सिविल वॉर में डूबा हुआ था। उनका आइडिया था कि अगर अफगानिस्तान में एक फ्रेंडली सरकार बिठाएंगे हम, तो इंडिया के खिलाफ एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिलेगी। तालिबान के लीडर मुल्ला उमर इस डील को एक्सेप्ट कर लेते हैं। ISI रिस्पॉन्स में ऑयल के टैंकर भेजता है, हथियारों की खेप भेजता है, पर पाकिस्तान के अंदर मौजूद मदरसे तालिबान के रिक्रूटमेंट सेंटर बन जाते हैं। सिर्फ 2 साल के अंदर अंदर 1996 में तालिबान काबुल पर कब्जा करने में सक्सेसफुल हो जाता है। अफगानिस्तान में तालिबान की नई सरकार बनती है। उस वक्त दुनिया में सिर्फ 3 देश थे जिन्होंने तालिबान की सरकार को ऑफिशियली रिकग्नाइज किया, पाकिस्तान उनमें से एक था। लेकिन फिर साल 2001 में अमेरिका पर सबसे खौफनाक आतंकी हमला होता है। अमेरिका जवाब में तालिबान की सरकार गिरा देता है। पब्लिकली देखा जाए तो पाकिस्तान अमेरिका का इस मौके पर साथ देता है, लेकिन

0: सीक्रेटली वो तालिबान को सेफ हेवन, ट्रेनिंग और पैसा सब कुछ दे रहा था। पाकिस्तान का ये डबल गेम 20 सालों तक चला और जब 2021 में अमेरिका निकल गया, तालिबान वापस पावर में आया, तो उस वक्त के पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा, अफगान्स ने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं।
1: ज़हनी गुलामी की जंजीरें तोड़ना ज्यादा मुश्किल होता है, जो अभी अफगानिस्तान में गुलामी की जंजीरें तो तोड़ दी उन्होंने।
0: जैसे तालिबान की जीत पाकिस्तान की अपनी जीत हो, पाकिस्तान को लगा कि अब उसके पपेट वापस गद्दी पर बैठ गए हैं, लेकिन पाकिस्तान ने एक चीज कैलकुलेट नहीं करी थी, जो ताकत तुम धार्मिक कट्टरता से पैदा करते हो वो कभी तुम्हारी नहीं रहती, वो अपने रूल्स से खेलती है, और वही ताकत अब पाकिस्तान की तरफ मुड़ चुकी थी। यहीं पर एंट्री होती है तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान की, शॉर्ट फॉर्म TTP। इसको पाकिस्तानी तालिबान भी बुलाया जाता है। ये वो लोग थे जो ISI के मदरसों में पढ़े थे, अफगान तालिबान के साथ लड़े थे, लेकिन जब से पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ दिया था अमेरिका की वॉर ऑन टेरर पर, तब से ये पाकिस्तान के खिलाफ हो गए थे। TTP का मकसद सिर्फ एक है, पाकिस्तान की इलेक्टेड सरकार को गिराकर शरिया लॉ लागू करना। यूनाइटेड नेशंस ने इसे आतंकी संगठन भी डिक्लेयर किया हुआ है, और इस मकसद के लिए TTP ने पाकिस्तान में खून की नदियां बहाई। जैसे कि दिसंबर 2014, इमेजिन करके देखो, पेशावर का आर्मी पब्लिक स्कूल, सुबह के 10 बज रहे हैं, बच्चे अपने क्लासरूम में बैठे हैं, कोई मैथ का सवाल सॉल्व कर रहा है तो कोई अपने दोस्त से बातें कर रहा है, उनके बैग्स में टिफिन बॉक्सेस हैं जो उनकी माओ ने सुबह पैक करके भेजे हैं, और तभी गनशॉट की आवाज सुनाई देती है। TTP के आतंकियों ने एक एक क्लासरूम में जाके गोलियां चलाई, 132 बच्चे मारे गए, 132 बच्चे जिनकी उम्र 8 से 18 साल के बीच थी। टीचर्स ने बच्चों को बचाने की कोशिश की, एक टीचर ताहिरा काजी ने अपने स्टूडेंट के सामने खड़े होकर गोलियां खाई, कुल 149 लोग मारे गए उस दिन। ये पाकिस्तान के इतिहास का सबसे काला दिन था। 2021 में तालिबान के पावर में आने के बाद से पिछले 5 सालों में TTP के हमले और भी ज्यादा बढ़ गए हैं। 2024 में 2236 लोगों की टेररिज्म रिलेटेड इंसिडेंट्स में मौत हुई पाकिस्तान में, जबकि 2025 में ये नंबर बढ़कर 4001 हो गया, ऑलमोस्ट डबल। ये बात इस हद तक बढ़ गई है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनिर ने TTP को फंडामेंटल एनिमी कहा है। लेकिन यहीं पर यह सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड बन जाती है। असल में TTP खुद को अफगान तालिबान का एक्सटेंशन बताता है, उसने अफगान तालिबान को एलिजियंस प्लेज की हुई है, और अफगान तालिबान ने TTP को अपनी टेरिटरी में सेफ हेवन दे रखा है। सोचकर देखो कितनी अजीब बात है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान के सबसे पुराने दोस्त के घर में बैठा है। ये ठीक वैसा ही है जैसा पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ किया था ओसामा बिन लादेन को शरण देकर। अब यही चीज तालिबान पाकिस्तान के साथ कर रहा है। और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक क्विक अपडेट देना चाहूंगा। पिछले एक साल में आप ऐसे 1,00,000 से ज्यादा लोगों ने मेरी AI मास्टर क्लास को अटेंड किया है, और इसी से ही रिलेटेड एक खुशखबरी देनी है कि इस महीने 26 अप्रैल को आ रही है AI मास्टर क्लास 3.0। नए अपडेट्स, नए टूल्स और नई नॉलेज के साथ इस क्लास को दोबारा से रीडिजाइन किया गया है। आपने जितना सब फीडबैक दिया था पिछली क्लासेस में, उस सब को इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की गई है, और रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स ऐड किए गए हैं, और 2026 में आई सारी नई टेक्नोलॉजी के अपडेट्स कवर किए गए हैं। तो अगर आपने पिछले साल कोई मास्टर क्लास का सेशन अटेंड किया था, इस महीने का सेशन डेफिनेटली ज्वाइन करना, क्योंकि बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। और अगर आपने पहले कभी कोई सेशन अटेंड नहीं किया है, तो ये सबसे अच्छा टाइम है शुरू करने का। ज्वाइन करने का लिंक नीचे पिंड कमेंट में और इस QR कोड में आपको मिल जाएगा, और इस महीने के सेशन में कई सारे बोनसेस भी आपको मिलेंगे, टूल डायरेक्टरीज, PDF गाइड्स और बहुत कुछ। चलिए अब अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। 8 अक्टूबर 2025 TTP ने खैबर पख्तूनवा में पाकिस्तान आर्मी के एक कॉन्वॉय पर एम्बुश किया, 11 पाकिस्तानी सोल्जर्स मारे गए, और इसके जवाब में पाकिस्तान ने जो किया वो कुछ ऐसा था जो पहले कभी नहीं किया था। उसने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर डायरेक्ट एयर स्ट्राइक की। टारगेट था TTP का चीफ नूर वली महसूद, जो काबुल में रहता था। इस स्ट्राइक में नूर वली तो बच गया, लेकिन इसकी वजह से पाकिस्तान और अफगान तालिबान आमने सामने आ गए। तालिबान की सरकार जवाब में पाकिस्तानी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर हमला करती है। कम से कम 23 पाकिस्तानी सैनिक मारे जाते हैं, अफगानिस्तान के भी 9 सैनिक मारे गए। कई दिनों तक क्लैशेस होते रहे, और फिर कतर और टर्की की मीडिएशन से सीज फायर हुआ। लेकिन ये सीज फायर दोस्तों एक इल्यूजन था, अभी तो और बड़ी वॉर आनी बाकी थी। पाकिस्तान की मांग सिंपल थी, तालिबान से कहा गया TTP पर एक्शन लो, लेकिन तालिबान ने ऐसा नहीं किया। और यही चीज इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट का सबसे कॉम्प्लिकेटेड हिस्सा है, जो ज्यादातर लोग नहीं जानते। इमेजिन करो, काबुल में तालिबान का डिफेंस मिनिस्टर एक कमरे में बैठा है, एक तरफ पाकिस्तान धमकी दे रहा है TTP को बंद करो वरना और बम गिराए जाएंगे, और दूसरी तरफ उसका इंटेलिजेंस चीफ बोल रहा है अगर हमने TTP को बंद

0: हुई, 213 घायल हुए और 1,00,000 से ज्यादा लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा है। लेकिन फिर आया 16 मार्च का दिन, जो इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट का सबसे काला दिन था। काबुल के पास एक हॉस्पिटल है, ओमिद एडिक्शन ट्रीटमेंट हॉस्पिटल। रमजान का महीना चल रहा था, अंदर लोग इलाज करवा रहे थे, कुछ नशे की लत छोड़ने की कोशिश कर रहे थे, तो कुछ के परिवार उनके पास बैठे थे, बच्चे भी थे। और तभी पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक आई। अफगानिस्तान के मुताबिक इस हमले में 400 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, 400 लोग, मरने वालों में बच्चे भी शामिल थे। पाकिस्तान ने कहा कि उसने टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया था, हॉस्पिटल को नहीं। लेकिन तस्वीरें और वीडियोस सब सच बता देती हैं। मलबे में गिरे हुए हॉस्पिटल के बिस्तर दिख रहे हैं, दवाइयां दिख रही हैं और लोगों की चीख सुनाई दे रही है। रमजान के महीने में एक हॉस्पिटल पर बम गिराना, दुनिया भर में इस चीज को लेकर इतनी आउटरेज हुई कि पाकिस्तान को मजबूर होकर ईद तक एयर स्ट्राइक्स को रोकना पड़ा। लेकिन ये सीज फायर सिर्फ एक पॉज था, टेम्पररी था। 26 मार्च को पाकिस्तान ने फिर से हमला शुरू कर दिया। इस वॉर की मिलिट्री रियलिटी ये है कि दोनों साइडों में से ना ही कोई हार सकता है ना ही कोई जीत सकता है। अफगानिस्तान की आर्मी एक कन्वेंशनल वॉर में पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकती, उनके पास कोई एयरफोर्स नहीं है और पाकिस्तान एयर स्पेस कम्प्लीटली डोमिनेट करता है। इसी कारण से तालिबान को कामिकाजे ड्रोन्स जैसे अनकन्वेंशनल मेथड्स पर डिपेंड होना पड़ रहा है। लेकिन फिर भी तालिबान को इस वॉर में एक बड़ा मौका दिख रहा है। तालिबान को पता है कि अफगानिस्तान की सॉवरेनिटी के लिए पाकिस्तान से लड़कर वो अपने देश के लोगों की नजर में नेशनल हीरो बन सकता है, जो उसे एक लेजिटिमेसी प्रदान करेगा। पाकिस्तान ग्राउंड इन्वेजन भी नहीं कर सकता क्योंकि अफगानिस्तान गोरिल्ला वॉरफेयर के लिए बनी हुई जमीन है और तालिबान फाइटर्स इसमें एक्सपर्ट्स हैं। हिस्ट्री भी यही बताती है, सोवियत यूनियन ने 10 साल तक कोशिश करी अफगान्स को इन्वेड करने, अमेरिका 20 साल तक लड़ा लेकिन दोनों हार गए। एक्सपर्ट के मुताबिक इस वॉर का मोस्ट लाइकली आउटकम एक कोअर्सिव डिप्लोमेसी है, यानी पहले फाइटिंग होगी, फिर सीज फायर और फिर फाइटिंग शुरू हो जाएगी। एंडलेस साइकिल चलती रहेगी, जब तक टीटीपी से संबंधित फंडामेंटल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी कोई सीज फायर टिकेगा नहीं। लेकिन इस पूरी कहानी में एक एंगल है जो बहुत कम डिस्कस हो रहा है और शायद ये सबसे इम्पोर्टेंट एंगल है। पाकिस्तान ने तालिबान को क्यों फंड किया था? इंडिया के खिलाफ स्ट्रेटेजिक डेप्थ के लिए। अफगानिस्तान को एक ऐसी जगह बनाओ जो इंडिया के खिलाफ बफर जोन का काम करे, ये पाकिस्तान की अफगानिस्तान पॉलिसी का फाउंडेशन था। लेकिन अब देखिए हो क्या रहा है, वही तालिबान जो पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ बनाया वो अब इंडिया के साथ ट्रेड एग्रीमेंट्स कर रहा है। इंडियन कंपनीज को कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं और तालिबान ने इंडिया को अपना एक इम्पोर्टेंट पार्टनर मानना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान ने तालिबान को बनाया, तालिबान ने टीटीपी को पनाह दी, टीटीपी ने पाकिस्तान पर हमले किए और अब पाकिस्तान अपनी ही बनाई हुई आग को बुझाने की कोशिश में पूरे अफगानिस्तान को जला रहा है। सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान अपनी ही जलाई हुई आग को बुझा पाएगा और कितने मासूम लोगों को यहाँ पर अपनी जान गंवानी पड़ेगी? आपको क्या लगता है दोस्तों, नीचे कमेंट्स में लिखकर बताइए। और तालिबान के इतिहास के बारे में अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हैं तो इस वाले वीडियो में समझ सकते हैं यहाँ क्लिक करके। और AI मास्टर क्लास 3.0 को ज्वाइन करना मत भूलना, यहाँ क्लिक कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चीनलाई समेत कड़ा चेतावनी दिँदै इरानलाई नयाँ हतियार प्रणाली उपलब्ध गराएमा त्यसको गम्भीर परिणाम भोग्नुपर्ने धम्की दिएका छन्। अमेरिकी गुप्तचर निकायहरूले आगामी हप्ताहरूमा इरानले चीनबाट तेस्रो देशको माध्यम प्रयोग गरी अत्याधुनिक हवाई रक्षा प्रणाली प्राप्त गर्न सक्ने संकेत पाएपछि ट्रम्पले यस्तो कड़ा प्रतिक्रिया दिएका हुन्। एकातिर इरानले अमेरिकी शर्तहरूलाई अत्यधिक कड़ा र एकपक्षीय भन्दै अस्वीकार गरेको छ भने अर्कोतिर चीनले हतियार आपूर्तिको मात्रा बढाएसँगै मध्यपूर्वको संकट अब झन जटिल र बहुपक्षीय सैन्य टकरावको दिशामा अघि बढ़ने संकेत गरिरहेको छ। दर्शकवृन्द, आउनुहोस् आजको यस श्रृंखलामा हामी शान्तिवार्ताको आवरणमा बुनिएको कूटनीतिक षड्यन्त्र, हर्मुजमा अमेरिकी युद्धपोतको रहस्यमय मुभमेन्ट र इजरायलले वार्तालाई कसरी निष्कर्षविहीन बनायो भन्ने बारेमा विशेष चर्चा गर्नेछौ। पाकिस्तानको मध्यस्थतामा इस्लामाबादमा भएको ऐतिहासिक फेस टू फेस वार्ता अन्तत 21 घण्टाको सघन छलफलपछि पनि कुनै ठोस सम्झौता बिना समाप्त हुन पुग्यो। आइतबार एक पत्रकार सम्मेलन गर्दै अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी भान्सले वार्ताको नराम्रो खबर सुनाउँदै इरानसँग सहमति हुन नसकेको आधिकारिक जानकारी दिएका थिए। भान्सका अनुसार 21 घण्टासम्म

0: भ्यालु आदि कुराले गर्दा पनि काठमाडौँ नै देशको राजधानी बन्नका लागि बेस्ट अप्सन थियो र अहिले पनि बेस्ट अप्सन नै छ भन्दा फरक नपर्ला। त्यसो त केही समय यता नेपालको राजधानी काठमाडौँबाट हटाएर अरू नै कुनै ठाउँमा सार्नुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि उठिरहेको छ। यदि त्यसो गर्ने हो भने काठमाडौँ जत्तिकै हिस्टोरिकल, कल्चरल र एडमिनिस्ट्रेटिभ इम्पोर्टेन्स भएको अरू कुन ठाउँ छ त त्यसमा बहस हुन आवश्यक छ। तपाईँ यो विषयमा के सोच्नुहुन्छ त कमेन्टमा भन्नुहोला र नेपालको एकीकरणका यी तीन भिडियोहरू पनि हेर्न नछुटाउनुहोला। अस्त थ्याङ्क यू फर वाचिङ।
1: 2026 इस्लामाबाद का रावलपिंडी गैरिसन, पाकिस्तान के सबसे पावरफुल जनरल्स एक कमरे में बैठे हैं। सामने स्क्रीन पर हैं सैटेलाइट इमेजेस, काबुल की सड़कें, टीटीपी के ठिकाने और तालिबान के एम्युनिशन डिपोट। इन जनरल्स के सामने एक बड़ी अजीब सी मुश्किल आ खड़ी है, क्योंकि जिन्हें इन्होंने खुद बनाया था आज उन्हीं को निशाना बनाना पड़ रहा है। नमस्कार दोस्तों, 27 फरवरी 2026 पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने कुछ ऐसा कहा जो किसी ने इमेजिन नहीं किया था। उन्होंने कहा, हमारा सब्र अब टूट चुका है, अब ये हमारे बीच एक ओपन वॉर है। अब नॉर्मली पाकिस्तान का इतिहास देखें तो कोई भी अज्यूम करेगा कि ये इंडिया से वॉर की बात कर रहे होंगे, लेकिन नहीं, ये स्टेटमेंट अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को लेकर थी। वही तालिबान जिसे पाकिस्तान ने खुद खड़ा किया, जिसे पाकिस्तान की ISI ने ट्रेन किया, फंड किया और दशकों तक सपोर्ट किया, आज उसी तालिबान के खिलाफ पाकिस्तान ने खुली जंग का ऐलान कर दिया है। हर एक वॉर की तरह इस वॉर की कीमत भी आम लोगों को चुकानी पड़ रही है। हर हफ्ते 100 से ज्यादा आम लोग मर रहे हैं, यानी हर दिन के लगभग 15 लोग। इसमें अस्पतालों पर हमले किए जा रहे हैं, बच्चों की मौत हो रही है, लेकिन सवाल ये कि आखिर ये सब शुरू क्यों हुआ? जिस तालिबान को पाकिस्तान ने बनाया वो पाकिस्तान का ही सबसे बड़ा नाइटमेयर कैसे बन गया? ये कहानी इतनी सिंपल नहीं है जितनी देखने में लगती है, क्योंकि इसमें जो ट्विस्ट है वो पाकिस्तान के जनरल्स ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। साल 1994, अफगानिस्तान की धूल भरी सड़कों पर एक कॉन्वॉय चल रहा है। इसमें बैठे हैं ISI के ऑफिसर्स और उनके साथ एक आदमी जिसका नाम है मुल्ला उमर। एक आंख से अंधा, पगड़ी बांधे ये इंसान जो एक छोटे से मदरसे में पढ़ाता था। ISI के ऑफिसर्स उसे एक डील ऑफर करते हैं, हम तुम्हें हथियार देंगे, पैसे देंगे, ट्रेनिंग देंगे, लेकिन तुम्हें हमारे लिए बस एक काम करना है, अफगानिस्तान पर कब्जा करो और हमारा कहना मानो। असल में इस डील का आइडिया 1990 के दशक में पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी को आया था, जब अफगानिस्तान सिविल वॉर में डूबा हुआ था। उनका आइडिया था कि अगर अफगानिस्तान में एक फ्रेंडली सरकार बिठाएंगे हम, तो इंडिया के खिलाफ एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिलेगी। तालिबान के लीडर मुल्ला उमर इस डील को एक्सेप्ट कर लेते हैं। ISI रिस्पॉन्स में ऑयल के टैंकर्स भेजता है, हथियारों की खेप भेजता है और पाकिस्तान के अंदर मौजूद मदरसे तालिबान के रिक्रूटमेंट सेंटर बन जाते हैं। सिर्फ 2 साल के अंदर अंदर 1996 में तालिबान काबुल पर कब्जा करने में सक्सेसफुल हो जाता है। अफगानिस्तान में तालिबान की नई सरकार बनती है। उस वक्त दुनिया में सिर्फ 3 देश थे जिन्होंने तालिबान की सरकार को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया, पाकिस्तान उनमें से एक था। लेकिन फिर साल 2001 में अमेरिका पर सबसे खौफनाक आतंकी हमला होता है। अमेरिका जवाब में तालिबान की सरकार गिरा देता है। पब्लिकली देखा जाए तो पाकिस्तान अमेरिका का इस मौके पर साथ देता है, लेकिन सीक्रेटली वो तालिबान को सेफ हेवन, ट्रेनिंग और पैसा सब कुछ दे रहा था। पाकिस्तान का ये डबल गेम 20 सालों तक चला और जब 2021 में अमेरिका निकल गया, तालिबान वापस पावर में आया, तो उस वक्त के पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा, अफगान्स ने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं।
2: ज़हनी गुलामी की जंजीरें तोड़ना ज्यादा मुश्किल होता है, जो अभी अफगानिस्तान में गुलामी की जंजीरें तो तोड़ दी उन्होंने।
1: जैसे तालिबान की जीत पाकिस्तान की अपनी जीत हो। पाकिस्तान को लगा कि अब उसके पपेट वापस गद्दी पर बैठ गए हैं, लेकिन पाकिस्तान ने एक चीज कैलकुलेट नहीं करी थी, जो ताकत तुम धार्मिक कट्टरता से पैदा करते हो वो कभी तुम्हारी नहीं रहती, वो अपने रूल्स से खेलती है और वही ताकत अब पाकिस्तान की तरफ मुड़ चुकी थी। यहीं पर एंट्री होती है तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान की, शॉर्ट फॉर्म TTP। इसको पाकिस्तानी तालिबान भी बुलाया जाता है। ये वो लोग थे जो ISI के मदरसों में पढ़े थे, अफगान तालिबान के साथ लड़े थे, लेकिन जब से पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ दिया था अमेरिका की वॉर ऑन टेरर पर, तब से ये पाकिस्तान के खिलाफ हो गए थे। TTP का मकसद सिर्फ एक है, पाकिस्तान की इलेक्टेड सरकार को गिराकर शरिया लॉ लागू करना। यूनाइटेड नेशंस ने इसे आतंकी संगठन भी डिक्लेयर किया हुआ है और इस मकसद के लिए TTP ने पाकिस्तान में खून की नदियां बहाई, जैसे कि दिसंबर 2014। इमेजिन करके देखो।

0: पेशावर का आर्मी पब्लिक स्कूल, सुबह के 10 बज रहे हैं, बच्चे अपने क्लासरूम में बैठे हैं, कोई मैथ का सवाल सॉल्व कर रहा है तो कोई अपने दोस्त से बातें कर रहा है, उनके बैग्स में टिफिन बॉक्सेस हैं जो उनकी माओ ने सुबह पैक करके भेजे हैं, और तभी गनशॉट्स की आवाज सुनाई देती है। टीटीपी के आतंकियों ने एक एक क्लासरूम में जाके गोलियां चलाई, 132 बच्चे मारे गए, 132 बच्चे जिनकी उम्र 8 से 18 साल के बीच थी। टीचर्स ने बच्चों को बचाने की कोशिश की, एक टीचर ताहिरा काजी ने अपने स्टूडेंट के सामने खड़े होकर गोलियां खाई, कुल 149 लोग मारे गए उस दिन। ये पाकिस्तान के इतिहास का सबसे काला दिन था। 2021 में तालिबान के पावर में आने के बाद से पिछले 5 सालों में टीटीपी के हमले और भी ज्यादा बढ़ गए हैं। 2024 में 2236 लोगों की टेररिज्म रिलेटेड इंसिडेंट्स में मौत हुई पाकिस्तान में, जबकि 2025 में ये नंबर बढ़कर 4001 हो गया, ऑलमोस्ट डबल। ये बात इस हद तक बढ़ गई है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनिर ने टीटीपी को फंडामेंटल एनिमी कहा है। लेकिन यहीं पर ये सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड बन जाती है। असल में टीटीपी खुद को अफगान तालिबान का एक्सटेंशन बताता है, उसने अफगान तालिबान को एलिजियंस प्लेज की हुई है, और अफगान तालिबान ने टीटीपी को अपनी टेरिटरी में सेफ हेवन दे रखा है। सोचकर देखो कितनी अजीब बात है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान के सबसे पुराने दोस्त के घर में बैठा है। ये ठीक वैसा ही है जैसा पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ किया था ओसामा बिन लादेन को शरण देकर। अब यही चीज तालिबान पाकिस्तान के साथ कर रहा है। और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक क्विक अपडेट देना चाहूंगा। पिछले एक साल में आप ऐसे 1,00,000 से ज्यादा लोगों ने मेरी AI मास्टर क्लास को अटेंड किया है, और इसी से ही रिलेटेड एक खुशखबरी देनी है कि इस महीने 26 अप्रैल को आ रही है AI मास्टर क्लास 3.0। नए अपडेट्स, नए टूल्स और नई नॉलेज के साथ इस क्लास को दोबारा से रीडिजाइन किया गया है। आपने जितना सब फीडबैक दिया था पिछली क्लासेस में, उस सब को इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की गई है, और रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स ऐड किए गए हैं, और 2026 में आई सारी नई टेक्नोलॉजी के अपडेट्स कवर किए गए हैं। तो अगर आपने पिछले साल कोई मास्टर क्लास का सेशन अटेंड किया था, इस महीने का सेशन डेफिनेटली ज्वाइन करना, क्योंकि बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। और अगर आपने पहले कभी कोई सेशन अटेंड नहीं किया है तो ये सबसे अच्छा टाइम है शुरू करने का। ज्वाइन करने का लिंक नीचे पिंड कमेंट में और इस QR कोड में आपको मिल जाएगा, और इस महीने के सेशन में कई सारे बोनसेस भी आपको मिलेंगे, टूल डायरेक्टरीज, PDF गाइड्स और बहुत कुछ। चलिए अब अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। 8 अक्टूबर 2025 टीटीपी ने खैबर पख्तूनवा में पाकिस्तान आर्मी के एक कॉन्वॉय पर एम्बुश किया, 11 पाकिस्तानी सोल्जर्स मारे गए, और इसके जवाब में पाकिस्तान ने जो किया वो कुछ ऐसा था जो पहले कभी नहीं किया था। उसने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर डायरेक्ट एयर स्ट्राइक की। टारगेट था टीटीपी का चीफ नूर वली महसूद, जो काबुल में रहता था। इस स्ट्राइक में नूर वली तो बच गया, लेकिन इसकी वजह से पाकिस्तान और अफगान तालिबान आमने सामने आ गए। तालिबान की सरकार जवाब में पाकिस्तानी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर हमला करती है, कम से कम 23 पाकिस्तानी सैनिक मारे जाते हैं, अफगानिस्तान के भी 9 सैनिक मारे गए। कई दिनों तक क्लैशेस होते रहे, और फिर कतर और टर्की की मीडिएशन से सीज फायर हुआ। लेकिन ये सीज फायर दोस्तों एक इल्यूजन था, अभी तो और बड़ी वॉर आनी बाकी थी। पाकिस्तान की मांग सिंपल थी, तालिबान से कहा गया टीटीपी पर एक्शन लो, लेकिन तालिबान ने ऐसा नहीं किया। और यही चीज इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट का सबसे कॉम्प्लिकेटेड हिस्सा है, जो ज्यादातर लोग नहीं जानते। इमेजिन करो, काबुल में तालिबान का डिफेंस मिनिस्टर एक कमरे में बैठा है, एक तरफ पाकिस्तान धमकी दे रहा है टीटीपी को बंद करो वरना और बम गिराए जाएंगे, और दूसरी तरफ उसका इंटेलिजेंस चीफ बोल रहा है अगर हमने टीटीपी को बंद कर दिया तो उनके हजारों फाइटर्स कल आइसिस खुरासान में चले जाएंगे, और फिर दोनों तरफ से हमला होगा। आइसिस खुरासान, शॉर्ट में से आइसिस के भी कहा जाता है, ये एक और खतरनाक ग्रुप है जो अफगानिस्तान में कई सालों से ऑपरेट कर रहा है। ये तालिबान का सबसे बड़ा राइवल है, और तालिबान को इसी चीज का डर है, अगर टीटीपी को बंद करवाया तो उसके लोग इस ग्रुप के साथ जुड़ जाएंगे, और प्रॉब्लम सॉल्व होने की जगह दो प्रॉब्लम खड़ी हो जाएंगी। अब पाकिस्तान टीटीपी को बर्दाश्त नहीं कर सकता क्योंकि वो उसके लोगों को मार रहा है, और तालिबान टीटीपी को छोड़ नहीं सकता। तो ये एक ऐसा गहरा गड्ढा है जिसमें दोनों तरफ से बाहर निकलने का रास्ता दिख नहीं रहा, और इसी गड्ढे ने फुल स्केल वॉर को शुरू किया। फरवरी 2026 के आखिरी दो हफ्तों में सब कुछ बड़ी तेजी से हुआ। 16 फरवरी को टीटीपी ने बॉर्डर चेकपॉइंट पर एक हमला किया जिसमें 11 सिक्योरिटी पर्सनल और एक बच्चे की मौत हुई। पाकिस्तान ने जवाबी एयर स्ट्राइक की, और फिर तालिबान ने वो किया जो किसी ने इमेजिन नहीं किया था। तालिबान ने बॉर्डर पर पाकिस्तान के खिलाफ फुल स्केल मिलिट्री ऑफेंसिव लॉन्च कर दिया। ये कोई छोटी मोटी फायरिंग नहीं थी, ये एक ऑर्गेनाइज्ड क्रॉस बॉर्डर ऑफेंसिव था। जवाब में पाकिस्तान ओपन वॉर का ऐलान कर देता है।
1: अफगान तालिबान रिजीम हैज टू मेक ए क्लियर चॉइस, द टेररिस्ट एंड द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड

0: बिटवीन पाकिस्तान। 27 फरवरी को पाकिस्तान काबुल, कांधार और पाकतिया प्रोविंस में एयर स्ट्राइक्स करता है। तालिबान के ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स और एम्यूनेशन डिपोज को टारगेट किया जाता है। कांधार पर की गई स्ट्राइक्स स्पेशली सिग्निफिकेंट थी क्योंकि कांधार तालिबान का स्पिरिचुअल बर्थ प्लेस है और तालिबान का सीक्रेटिव लीडर हिबतुल्ला अखुंजादा यहीं रहता है। पाकिस्तान एक साफ मैसेज देना चाह रहा था तालिबान को कि हम तुम्हारी लीडरशिप को डायरेक्टली टारगेट कर सकते हैं। 26 फरवरी से 13 मार्च के बीच सिर्फ 15 दिनों में 76 आम लोगों की मौत हुई, 213 घायल हुए और 1,00,000 से ज्यादा लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा है। लेकिन फिर आया 16 मार्च का दिन जो इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट का सबसे काला दिन था। काबुल के पास एक हॉस्पिटल है, ओमिद एडिक्शन ट्रीटमेंट हॉस्पिटल। रमजान का महीना चल रहा था, अंदर लोग इलाज करवा रहे थे, कुछ नशे की लत छोड़ने की कोशिश कर रहे थे तो कुछ के परिवार उनके पास बैठे थे, बच्चे भी थे। और तभी पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक आई। अफगानिस्तान के मुताबिक इस हमले में 400 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, 400 लोग, मरने वालों में बच्चे भी शामिल थे। पाकिस्तान ने कहा कि उसने टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया था, हॉस्पिटल को नहीं। लेकिन तस्वीरें और वीडियोस सब सच बता देती हैं। मलबे में गिरे हुए हॉस्पिटल के बिस्तर दिख रहे हैं, दवाइयां दिख रही हैं और लोगों की चीख सुनाई दे रही है। रमजान के महीने में एक हॉस्पिटल पर बम गिराना, दुनिया भर में इस चीज को लेकर इतनी आउटरेज हुई कि पाकिस्तान को मजबूर होकर ईद तक एयर स्ट्राइक्स को रोकना पड़ा। लेकिन ये सीज फायर सिर्फ एक पॉज था, टेम्पररी था। 26 मार्च को पाकिस्तान ने फिर से हमला शुरू कर दिया। इस वॉर की मिलिट्री रियलिटी ये है कि दोनों साइडों में से ना ही कोई हार सकता है ना ही कोई जीत सकता है। अफगानिस्तान की आर्मी एक कन्वेंशनल वॉर में पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकती, उनके पास कोई एयरफोर्स नहीं है और पाकिस्तान एयर स्पेस कम्प्लीटली डोमिनेट करता है। इसी कारण से तालिबान को कामिकाजे ड्रोन्स जैसे अनकन्वेंशनल मेथड्स पर डिपेंड होना पड़ रहा है। लेकिन फिर भी तालिबान को इस वॉर में एक बड़ा मौका दिख रहा है। तालिबान को पता है कि अफगानिस्तान की सॉवरेनिटी के लिए पाकिस्तान से लड़कर वो अपने देश के लोगों की नजर में नेशनल हीरो बन सकता है जो उसे एक लेजिटिमेसी प्रदान करेगा। पाकिस्तान ग्राउंड इन्वेजन भी नहीं कर सकता क्योंकि अफगानिस्तान गोरिल्ला वॉरफेयर के लिए बनी हुई जमीन है और तालिबान फाइटर्स इसमें एक्सपर्ट्स हैं। हिस्ट्री भी यही बताती है, सोवियत यूनियन ने 10 साल तक कोशिश करी अफगान्स को इन्वेड करने की, अमेरिका 20 साल तक लड़ा लेकिन दोनों हार गए। एक्सपर्ट के मुताबिक इस वॉर का मोस्ट लाइकली आउटकम एक कोअर्सिव डिप्लोमेसी है, यानी पहले फाइटिंग होगी, फिर सीज फायर और फिर फाइटिंग शुरू हो जाएगी। एंडलेस साइकिल चलती रहेगी जब तक टीटीपी से संबंधित फंडामेंटल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, कोई सीज फायर टिकेगा नहीं। लेकिन इस पूरी कहानी में एक एंगल है जो बहुत कम डिस्कस हो रहा है और शायद ये सबसे इम्पोर्टेंट एंगल है। पाकिस्तान ने तालिबान को क्यों फंड किया था? इंडिया के खिलाफ स्ट्रेटेजिक डेप्थ के लिए। अफगानिस्तान को एक ऐसी जगह बनाओ जो इंडिया के खिलाफ बफर जोन का काम करे, ये पाकिस्तान की अफगानिस्तान पॉलिसी का फाउंडेशन था। लेकिन अब देखिए हो क्या रहा है, वही तालिबान जो पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ बनाया वो अब इंडिया के साथ ट्रेड एग्रीमेंट्स कर रहा है। इंडियन कंपनीज को कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं और तालिबान ने इंडिया को अपना एक इम्पोर्टेंट पार्टनर मानना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान ने तालिबान को बनाया, तालिबान ने टीटीपी को पनाह दी, टीटीपी ने पाकिस्तान पर हमले किए और अब पाकिस्तान अपनी ही बनाई हुई आग को बुझाने की कोशिश में पूरे अफगानिस्तान को जला रहा है। सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान अपनी ही जलाई हुई आग को बुझा पाएगा और कितने मासूम लोगों को यहाँ पर अपनी जान गंवानी पड़ेगी? आपको क्या लगता है दोस्तों, नीचे कमेंट्स में लिखकर बताइए। और तालिबान के इतिहास के बारे में अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हैं तो इस वाले वीडियो में समझ सकते हैं यहाँ क्लिक करके। और AI मास्टर क्लास 3.0 को ज्वाइन करना मत भूलना, यहाँ क्लिक कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चीनलाई समेत कड़ा चेतावनी दिँदै इरानलाई नयाँ हतियार प्रणाली उपलब्ध गराएमा त्यसको गम्भीर परिणाम भोग्नुपर्ने धम्की दिएका छन्। अमेरिकी गुप्तचर निकायहरूले आगामी हप्ताहरूमा इरानले चीनबाट तेस्रो देशको माध्यम प्रयोग गरी अत्याधुनिक हवाई रक्षा प्रणाली प्राप्त गर्न सक्ने संकेत पाएपछि ट्रम्पले यस्तो कड़ा प्रतिक्रिया दिएका हुन्। एकातिर इरानले अमेरिकी शर्तहरूलाई अत्यधिक कड़ा र एकपक्षीय भन्दै अस्वीकार गरेको छ भने अर्कोतिर चीनले हतियार आपूर्तिको मात्रा बढ़ाएसँगै मध्यपूर्वको संकट अब झन जटिल र बहुपक्षीय सैन्य टकरावको दिशामा अघि बढ़ने संकेत गरिरहेको छ। दर्शकवृन्द, आउनुहोस् आजको यस श्रृंखलामा हामी शान्तिवार्ताको आवरणमा बुनिएको कूटनीतिक षड्यन्त्र, हर्मुजमा अमेरिकी युद्धपोतको रहस्यमय मुभमेन्ट र इजरायलले वार्तालाई कसरी निष्कर्षविहीन बनायो भन्ने बारेमा

0: एप्लिकेसन्स र विभिन्न आइएनजिओजहरू पनि यही रहेका छन्। यस्ता संस्थाहरूले विश्वव्यापी रूपमा काठमाडौँको महत्व दर्शाउने गर्छन्। काठमाडौँ नेपालको फाइनेन्सियल हब पनि हो, विभिन्न व्यावसायिक हेडक्वार्टर पनि यही नै अवस्थित छन्। यसरी हेर्दा काठमाडौँलाई नेपालको राजधानीको रूपमा घोषित गरिनुको श्रेय भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, प्रशासनिक, आर्थिक र राजनीतिक पक्षलाई नै जान्छ। काठमाडौँको सेन्ट्रल लोकेसन, आर्थिक वृद्धि, भाइब्रेन्ट अर्बन एटमोस्फियर, बढ्दो पर्यटन, डाइभर्स कल्चरल भ्यालु आदि कुराले गर्दा पनि काठमाडौँ नै देशको राजधानी बन्नका लागि बेस्ट अप्सन थियो र अहिले पनि बेस्ट अप्सन नै छ भन्दा फरक नपर्ला। त्यसो त केही समय यता नेपालको राजधानी काठमाडौँबाट हटाएर अरू नै कुनै ठाउँमा सार्नुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि उठिरहेको छ। यदि त्यसो गर्ने हो भने काठमाडौँ जतिकै हिस्टोरिकल, कल्चरल र एडमिनिस्ट्रेटिभ इम्पोर्टेन्स भएको अरू कुन ठाउँ छ त, त्यसमा बहस हुन आवश्यक छ। तपाईँ यो विषयमा के सोच्नुहुन्छ त कमेन्टमा भन्नुहोला र नेपालको एकीकरणका यी तीन भिडियोहरू पनि हेर्न नछुटाउनुहोला। हस्त, थ्याङ्क यू फर वाचिङ।
1: 2026 इस्लामाबाद का रावलपिंडी गैरिसन, पाकिस्तान के सबसे पावरफुल जनरल्स एक कमरे में बैठे हैं। सामने स्क्रीन पर हैं सैटेलाइट इमेजेस, काबुल की सड़कें, टीटीपी के ठिकाने और तालिबान के एम्युनिशन डिपो। इन जनरल्स के सामने एक बड़ी अजीब सी मुश्किल आ खड़ी है, क्योंकि जिन्हें इन्होंने खुद बनाया था आज उन्हीं को निशाना बनाना पड़ रहा है। नमस्कार दोस्तों, 27 फरवरी 2026 पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने कुछ ऐसा कहा जो किसी ने इमेजिन नहीं किया था। उन्होंने कहा, हमारा सब्र अब टूट चुका है, अब ये हमारे बीच एक ओपन वॉर है। अब नॉर्मली पाकिस्तान का इतिहास देखें तो कोई भी अज्यूम करेगा कि ये इंडिया से वॉर की बात कर रहे होंगे, लेकिन नहीं, ये स्टेटमेंट अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को लेकर थी। वही तालिबान जिसे पाकिस्तान ने खुद खड़ा किया, जिसे पाकिस्तान की ISI ने ट्रेन किया, फंड किया और दशकों तक सपोर्ट किया, आज उसी तालिबान के खिलाफ पाकिस्तान ने खुली जंग का ऐलान कर दिया है। हर एक वॉर की तरह इस वॉर की कीमत भी आम लोगों को चुकानी पड़ रही है। हर हफ्ते 100 से ज्यादा आम लोग मर रहे हैं, यानी हर दिन के लगभग 15 लोग। इसमें अस्पतालों पर हमले किए जा रहे हैं, बच्चों की मौत हो रही है, लेकिन सवाल ये कि आखिर ये सब शुरू क्यों हुआ? जिस तालिबान को पाकिस्तान ने बनाया वो पाकिस्तान का ही सबसे बड़ा नाइटमेयर कैसे बन गया? ये कहानी इतनी सिंपल नहीं है जितनी देखने में लगती है, क्योंकि इसमें जो ट्विस्ट है वो पाकिस्तान के जनरल्स ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। साल 1994, अफगानिस्तान की धूल भरी सड़कों पर एक कॉन्वॉय चल रहा है। इसमें बैठे हैं ISI के ऑफिसर्स और उनके साथ एक आदमी जिसका नाम है मुल्ला ओमर। एक आंख से अंधा, पगड़ी बांधे ये इंसान जो एक छोटे से मदरसे में पढ़ाता था। ISI के ऑफिसर्स उसे एक डील ऑफर करते हैं, हम तुम्हें हथियार देंगे, पैसे देंगे, ट्रेनिंग देंगे, लेकिन तुम्हें हमारे लिए बस एक काम करना है, अफगानिस्तान पर कब्जा करो और हमारा कहना मानो। असल में इस डील का आइडिया 1990 के दशक में पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी को आया था, जब अफगानिस्तान सिविल वॉर में डूबा हुआ था। उनका आइडिया था कि अगर अफगानिस्तान में एक फ्रेंडली सरकार बिठाएंगे हम तो इंडिया के खिलाफ एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिलेगी। तालिबान के लीडर मुल्ला ओमर इस डील को एक्सेप्ट कर लेते हैं। ISI रिस्पॉन्स में ऑयल के टैंकर्स भेजता है, हथियारों की खेप भेजता है और पाकिस्तान के अंदर मौजूद मदरसे तालिबान के रिक्रूटमेंट सेंटर बन जाते हैं। सिर्फ 2 साल के अंदर अंदर 1996 में तालिबान काबुल पर कब्जा करने में सक्सेसफुल हो जाता है। अफगानिस्तान में तालिबान की नई सरकार बनती है। उस वक्त दुनिया में सिर्फ 3 देश थे जिन्होंने तालिबान की सरकार को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया, पाकिस्तान उनमें से एक था। लेकिन फिर साल 2001 में अमेरिका पर सबसे खौफनाक आतंकी हमला होता है। अमेरिका जवाब में तालिबान की सरकार गिरा देता है। पब्लिकली देखा जाए तो पाकिस्तान अमेरिका का इस मौके पर साथ देता है, लेकिन सीक्रेटली वो तालिबान को सेफ हेवन, ट्रेनिंग और पैसा सब कुछ दे रहा था। पाकिस्तान का ये डबल गेम 20 सालों तक चला और जब 2021 में अमेरिका निकल गया, तालिबान वापस पावर में आया, तो उस वक्त के पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा, अफगान्स ने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं।
2: ज़हनी गुलामी की जंजीरें तोड़ना ज्यादा मुश्किल होता है, जो अभी अफगानिस्तान में गुलामी की जंजीरें तो तोड़ दी उन्होंने।
1: जैसे तालिबान की जीत पाकिस्तान की अपनी जीत हो, पाकिस्तान को लगा कि अब उसके पपेट वापस गद्दी पर बैठ गए हैं, लेकिन पाकिस्तान ने एक चीज कैलकुलेट नहीं करी थी, जो ताकत तुम धार्मिक कट्टरता से पैदा करते हो वो कभी तुम्हारी नहीं रहती, वो अपने रूल्स से खेलती है और वही ताकत अब पाकिस्तान की तरफ मुड़ चुकी थी। यहीं पर एंट्री होती है तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान की, शॉर्ट फॉर्म TTP। इसको पाकिस्तानी तालिबान भी